मेरा बहता, लो तन में जान आई, होठों पे तान आई, मेरी चकोरी चांदनी में करके स्नान आई, बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया।

का बहता। लोतन में जान आई, होठों पे तान आई, मेरी चकोरी चांदनी में करके स्नान आई। बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया।

0: दादी। वो यहीं पर।
1: यहीं
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।